डूबी रही। मन एक न चित स मूड मनाओ, हर विसरत तेरे गुण गले अरहाओ। नाहो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पहया। प्रणवत नानक दिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा। पई प्राप्त मानुख जिहरिया,

पुनरास का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट गगन तय पही सब ज्ञान बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्ट दाह गरीबन बाजा अखल भवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो बारे कबियों बाचे बेनती चौ पई हमरी करो हादर छा पूर्ण होए चित की इच्छा।

कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछानाए, कट कट के पट पट की जानाए। जाऊद कर करा करताना, प्रजा तर तब देह पारा। जब या कर कर तो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह थर सब हूँ। जेते बदनम सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे।

चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सासपन जाय अर्ध सासपन तीन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रव वारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा

दस में गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद। दस में गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद। जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन्ना जीते पंच बेकार। तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन परतार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए।

0: कुछ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बार दरमा दे ठाडे दरबार।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: कुछ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के बार कहो कल गुर सेविया अहंस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो वैसे पथक समुदी नूरे अरसाह कुरसाह चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन

अनेका संख्या किते बावन हारे किते राग परी से कहियन किते गावन हारे गावे है तोह नो पावनो पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दवारी गावे है चित गुप्त लिख जाना है लेख लेख धर्म विचारी गावे ही सर ब्रह्मा देवी सोहन दस बारी गावे ही दासन बैठी देवते अंग दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न कीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले गावन रत्नू पाए तेरे आठ सर तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर करड़ के तारे सही तदनु गावे जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चित दयावन नानक विचारे सोई सोई दस साहिब साचा साटी नाई ऐ पियो सी जान जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिनू पाई

परम बृद्धे नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पे किए परमी भोगी भुगते नमो जोग जोगी स्वरम परम जुगते

अछेदीय भेदीय नाम काम समसु प्राधिस्म सस्ताम तेरा जोर चातरी छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभु है जुग है दिस है पे सैंग भुजंग प्रयात संद अगाधे अबाधे आनंद स्वरूपे नमस्मान समस्त निधाने नमस्तवंग नाथे नमस्तवंग परमाते नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग भंजे नमस्तवंग काले नमस्तंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साहज साहज नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृशंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा

भगवती छंद ता प्रसाद कते के अछज दिशा के अभिज पिसा के अगंज करना के अपंज बरना के अभिज लोक के अदित सोक के अवधूत बरना के भूत करना है के राजिंग प्रभ के त्रभंग तुझ के शोक बरना के सर्वा प्रणय के जगतंग कृतियाँ के छत्रंग छत्रियाँ के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपह अनुपह

नमो नरपनासे सदैव प्रकाशे अनंगं त्रुपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्र न ताता न माता न जात न पाता न रसाक सरीका मित्तो मिका सदैव प्रभ अजाहि भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशर सलाम है समस्त लुकलाम है के साहब दिमाग है के हसन तिरागी के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमल कमाल है के विष्णु दिवाल है करीमल कराज है गरीब नवाजे है हरि फल सकन है कलंक प्रणास है हरि फल सकन है रसल फिकन है कलंक प्रणास समस्त निवास है गंजल गरीम है रजाय करीम है समस्त जुबा है कि साहब करा है कि नरक प्रणास है बहस्तल निवास है कि सर्वल गवान है मिश्र रवान है तमाम जी मैं समस्त अजीज है परम परमी स समस्त अदीस है अदेसल लेख है मेसल भेख है जमीन जमा है अमिकल मा है करीमल कुमार के जोरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्त सुभाष है के अजब स्वरूप है के मित्त विभूत है के मित्त प्रसा है के आत्म प्रभ है के अचलंग अनंग है के मित्त भंग है मद भर छंद प्रसाद मोन मन प्रणाम गुण गण मदाम हर वर गंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर खंड भर नर मंड अन भवनास मोन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल सल मदाम अनछ जगत

हमरी करो हादर छांग पूर्ण होय चित की छांग तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे।

सुजियम प्रभु अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो दुलट जिते उठ बत उत्पाताऊ सकल मलेश करो रण काताऊ जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुट दुख तुह मरे पुरख जम पग

चेक करता। श्री अस्तो जो जपै दयाला पूर्ण कर ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख नत सब आपत कोई अड़ल। सुनै गुंग जो जाहि सो रस न पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भाव निकट नंग तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत 1750 जाए अर्ध सहस फुन कीन कही जाए भाद्रव सुधी अष्टमी रबारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गह जब ते तुमरे तब ते को अंक त्रे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत।

मनु के अनुसार ये एवड दाता जे अग्न मह आहार पहुँचावे उसनु केह पहुँच न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख दस माली है। कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो बसारी है जैसी अगन उदर मह

कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुखसार कुदरत पाताले आकाशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत निकिया।

सुख मूर्त राम निरंजन काया कायाकार सत्य अमन संतोख उपजय देण कै विचार। दीदी मंगै सहसा गुणा सो करे संसार।

ला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़।

मान सोई जो होगा। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोगा। कहो नानक एक बिन दूजा, वरना करना जोगा। टोडी महला पंजवा, सतगुर आयो सरन तुहारी। मिला सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी। रहाओ अवर न सूजा दूजी ठाहर, हर परयो तो द्वारी। लेखा लेखा छोड़ लेखा, छूटा है हम निर्गुण ले हो बारी। साध बख सिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछा परयो, राख ले हो एह बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निध गायन। शांत सहज रह सो मन उपजियो, सगले दुख पलायन। रहाओ जो मग है सोई सोई पाव है, सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दुह हू ते छूटा है, जन्म मरण दुह हू ते छूटा है। पव जल जगत तरान, खोजत खोजत तत्व बिचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाह जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हाट्यो। पार ब्रह्म प्रभ भये दयाला, सिवकै बाण सिर काट्यो। रहाओ काल जाल जम जोहे न साका, सच का पंथा थाट्यो। खात खर्चत किछ निखुटत नाही, राम रतन धन खाट्यो। भस्मा भूत हुआ खिन भीतर, अपना किया पाया। आगम निगम कह जन नानक, सब देखे लोक सबाया। टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किल विख भरे। साध संग भजन कर स्वामी, ढाकन को एक हरे। रहाओ अनेक छिदर बोहित के छुटकत, थाम न जाही करे। जैसका बोहित तिस आराधे, खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाह, वे ऊहा ही है तरे। जैसका ओए ऊहा ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राख हो सरन परे। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ। काढ़ कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ। रहाओ तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास। ताको बिघन को लागा, जा की प्रभा गैरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करन कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध

अथ बाहु स्यो लुबड़ेयो नेह पागड़ो पाहे संजोयो रे सौन मान सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राशत मिटेयो रे जा को लहनो महाराज रीगा ठड़ियो जन नानक गर्भास न पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा धुप दे वो अहंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गोना मेरो प्रभ जी कीना पंच दोख अर अहं रोग एह तन ते सगल दूर कीना रहाओ बंधन तोर छोर बिखिया ते गुर को शब्द मेरा ही अरा दीन रूप अनरूप मोरो कछ न बिचार्यो प्रेम गह्यो मोहे हर रंग पीन पेख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हर खे पतीन तैसे ही को गृहो सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तैसे ही को तीन टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत एही कर्म धर्म जापे ही राम नाम निर्मल हरीत रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरा देखन कौ दर्शन प्रभ नीत बाट काट तोसा संग मोरा मन अपने कौ मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पय मन निर्मला कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया अद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बेसर नहीं निमख ही अरे ते अपने भगत कौ पूर्ण दान रहाओ खोवहो परम राख मेरे प्रीत मांतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृष्ट तार हो प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावै जस पूरा गावह समरथ कान तेरी सरन जीअन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूरा दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचा पूरा रहाओ दह दिस रब रहया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूरा जो तुमरा जस गावा करते से जन कबहो न मरते चूरा धंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बेसूरा सुख संपत भोग रस इस जी के बिन हर नानक जाने कूरा टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह न सको बिन प्रीतमा दर्शन देखन कौ धारी मन आस रहाओ सिमरव नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जमी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूमि जन सो खावन बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा आनन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छाल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोबिद भजन बिन हड़का जाल रहाओ छोड़ स्यान बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चाल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह काय हो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खाल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पय माल टोडी महला पंजवा माई चरण गुरमीठ।

अगनकुंट मह उर्द लिवलागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेवहो मेरे माना हरंत छड़ा मनहारा।

आधार जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार घट घट मालक दिलांका सच्चा परवदगार कुदरत की मना जानी है वड्डा वे परवाह कर बंदे तो बंदगी जिचर कट में सा तू समरथ अकत अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास तिलंग महला पंजवा करती जा करते कुदरती मुस्ताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पा कराओ किनमय ताप तापदा आचर्ज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे में दीप खुद खसम कलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सरैन जे तो दहरा दे सो क्यों दो जग जाए अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार गुना उसके सगले आपु तेरे जंदे कह दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सासुक तेरा नौ गुरमिल नानक बूझे आ सदा एक सगाओ तिलंग महला पंजवा

दास मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझी पास विचे धरती विचे पानी विचकास अग्न तरी जाए बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर की जाए हर की वड्याई देखो संत हो हर निमाणिया मान देवाय ज्यों धरती चरण तले ते उपर आवे त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए सुही महला चौथा तू करता सब कुछ आपे जाने क्या तुद पै आख सुनाई है बुरा भला तुद सब कुछ सूझ है जेहा को करे तेहा को पाई है मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है बुरा भला तुद सब कुछ सूझ है तुद भावै तिवै बुलावै राओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देवै एक मानुख धंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जेही तू नदर करह तेहा को होवै बिन नदरी नाही को पेख तेरी वड्याई तू है जान है सब तुदनु नित त्याई जिसनो तुद भावै तिसनो तू मिल है जन नानक सो थाए पाए सुई महला चौथा जिनका अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पै जिन हर नाम ते आया तिन पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन अरोग पाए गुर बचनी जिना जपया मेरा हर हर तिनके हो मैं रोग गए राओ ब्रह्मा विष्णु महाद्यो त्रै गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई जिन किए तिसे न चेता बपड़े हर गुरमुख सोजी पाई हो मैं रोग सब जगत व्यापया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हों बलारी जन सिष्ठ साजी सोई घर जानै ताका रूप अपारो नानक आपे वेकर भिक्षै गुरमुख ब्रह्म विचारो सुही महला चौथा कीता करना सरवर जाई किछ कीचै जे कर सकियै अपना कीता किछु न होवै ज्यों हर पावै त्यों रखियै मेरे हर जियो सबको तेरा वस असा जोर नाही जे किछ कर हम सक है ज्यों पावै तिवै बख्श राओ सब जियो।

तो पहुता जो प्रिय माने तिनकी रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सराओ भेख दिखावे सच ना कमावे कह तो महली निकट न आवे अतीत सदाए माया का माता मन नहीं प्रीत कह मुखराता कहो।

मेरा अंतर जामी भगत ना कह संग स्वामिराव, सुन सुन अमृत नाम त्यावा, आठ पैर तेरे गुण गावा, पेक पेक लीला मन आनंदा, गुण अपार परमानंदा, जाके सिमरन कछ पौ न व्यापै, सदा सदा नानकार जापै सुई महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलहारी, चरण कमल मन प्राण उधारी, राव साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन अधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी, कहो नानक ए तत् विचारी, राम नाम जप पार उतारी। सुई महला पंजवा, लोभ मोह मगन अपराधी, करण हार की सेव न साधी, पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारी, राख लो मोहि निर्गुण हरि राव, तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची दे मानो कब मानी, स्वाद बाद ही रख मद माया, इन संग लाग रतन।

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम चारे, सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाहां दा शाह, जिस पास बैठे सोही है सबना दा विसाह। वाहिगुरु साहिब जी टोडी महला पंजवा, घर पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

जस बिसरावे मान मोह दोनों कर पार हर गोबिंद के गुण गावे कहो नानक बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बलावल महला नावा।

करे ब्रत फुन राखे न मनुआ बस जाकू न फल धर्म ताहे तुम मानु साच कहत मैं जाकू जैसे पान जल में राखियु पीदी नाही ते पानी तैसे ही तुम ताय पछानु भगतहीन जो प्राणी कल मैं मौत नाम ते पावत गुर जपीद बतावी कहो नानक सुई नार गरुआ जो प्रभ की गुण गावे बलावल अठपदिया महला पहला कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट वसे देखे सब सोई गुरमुख विरला बूझे कोई विण पै पै भगत न होई सबद रति सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मार रहाउ ज्ञान ज्ञान।

तुती उजल तिलक गल माला अंतर क्रूद पड़ है नाट साला नाम सार माया मद पिया बिन गुर भगत नाहीं सुख थिया।

प्रभ छूट ना सके बहुत मन भैया कहे ने प्रभ अवर अवर किस की जे सब बाल शिगार फूकट फूकटिया कियो शिगार मिलन कहता ही प्रभ लियो।

करे अरे आप कराए। एको वारते अवर न कोए मान रोस कीजे जे दूजा होए सतगुर सेवे करनी सारी। धर साचे साचे विचारी तित्ती वार सब शब्द सहाए सतगुर सेवे ता फल पाए तित्ती वार सब आवे जाए गुर शब्द ने चल सदावा सच समाए। तित्ती वार जा ता जा सच राते बिना में सब भरमे काचे मनमुख मरे मर बिगती जाए एक ना चेते दूजे लोभाहे अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन सब दे गो पाए पार।

मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसा को आस कराई किस किसी के हाथ नाही। मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुर बूझ बजाई जा नानकी आस तू जान ही हर दर्शन दीख हर दर्शन तरपताई गौंट महला चौथा ऐसा हर सेवी नित त्याई जू खिन मैं किलवक सब करे बिनासा जी हर त्याग अवर की आस कीजे ता हर नैफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेव सुख दादा स्वामी जिस सेवे सब भूख अगलासा। मेरे मन हर ऊपर कीजे प्रवासा जय जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जांदा सारा।

निर्मल जाके संग हर हर सिमरन जाके संकल्प हो नाजा जाके संग हृदय प्रकाश से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाये जाके नीत रहा जाके अंतर हर हर मन वसे जाके अपदेश परम पुन से जाके

कर कृपा कर दिया बताए। राम राम राम सदा साए, राम राम राम रेवलाए, राम राम जब निर्मल भय जन्म जन्म के गिल गाए, राम द राम जन्म

प्राव सब मान तन घी सब मिटे बोलाए दुखा दे रहा सगला जाए हर गुण गाव दरिये संसार बड़ भाग घी पाइये पुरखो पार जो जन कर कीर्तन गोपाल तिसको पोए न सके जमकाल जग माया सो प्रवान गुरमुख अपना खसम पछाण हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटे अनुवाद सदा जूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंद हर धन काट किए भंडार मिल सतगुर पासा का सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चानी नानक मन लागा गुण महला पंजमा भव सागर बोहित हर चरण सिमत नाम नाही फिर मारन हर गुण रामद नाही जम बंद मां विचार पंच दूत मंद तुस नाही पूर्ण नाद जानत अपने को दीजे हाथ राव सिमरत सातर वेद पुराण पर का करे वख्याण जोगी जति वैष्णो रामदास मित नाही ब्रह्म बनास कर्ण पला करे शिव देव तिल नहीं बूझे अलख भेव प्रेम पद जिस आपे दे जग मैं विरले के मोहे निर्गुण गुण किसू नाहे सरन दान तेरी दृष्टि माहे दीन नानक दीन जाचे तेरी सेव कर कृपा दीजे गुरदेव गुण महला पंजवा

खाओ। जैसे गाय का बसरा सूट लहा, तन चुगता माखन कूट लहा, नाम देहु नारायण पाया, गुर भेट अलख लखाया। जैसे बिखेत पर नारी, जैसे नामे प्रीत मरारी।

कोई बाछे पिस्त कोई सुर गिंदु को नानक जिन हुकम पछाता प्रभ साहिब का तिन पेद जादा। राम कली महला पंजवा पवने।

ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ए तो चलत प्यार हो। अगली किज खबर न पाई, रोवन हार भी उठ सिधाई। परम मोह के बांधे बंद, सुपन पे आपक लाए अंध। ए त्यो रचन रचया कर तार, आवद जावद हुकम अपार। नै को मुआ ना मरने जोग, नै बिन से अविनाशी होग। जो है जान जानो सो है ना नाए, जानन हारे को बल जाओ। को नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया। राम कली महला पंजवा, जप गोविंद गोपाल लाल। राम नाम सिमर तू जीवे, फिर न खाई महाकाल। राव कोट जन्म परम प्रम प्रम आयो, बड़े पाग साध संग पायो। बिन गुरु पूरे नाही उधार, बाबा नानक आके ए बिचार। राग मा राग राम कली महला बनवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चार पुकारे ना तू माने, खट भी एका बात बखाने। दस अष्टी मिल एको कहया, तापी जोगी भेद न लया। किंकुरी अनूप वाजे, जोगिया मतवारो रे रहाओ। प्रथमे वस्या सत का खेड़ा, तृतीय में किश पया दुतेड़ा। द्वितीया अर्धो अर्ध समाया, एक रहा था एक दिखाया। एक के सूत परोए मणिये, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिये। फिरती माला बोबिध पाए, खिंचया सूत न आई थाए। चौमे एक के मट है किया, तय बिखड़े थान अनिक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। यों किंकुरी अनूप वाजे, सुन जोगी के मन मीठी लागे। रहाओ दूजा राम कली महला बनवा, तागा करके लाई थिगली। लो नाड़ी सुआए हस्ती, अम्बे का कर डंडा तरया। क्या तू जोगी गर्भ परया, जब नाथ दिन रहनाई। तेरी खिंदा दो दिहाई राव, गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी। मेरी तेरी मुद्रा तारी, मांगे टूका तृप्त ना पावे। नाथ छोड़ जाचे लाज न आवे, चल चित जोगी आसन तेरा। सिंगी वाजे नित उदासेरा, गुर गोरख की तै बूझ न पाई। फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला। रह रास मारी गुर गोपाला, नामे खिंता नामे बस्तर। जन नानक जोगी होया अस्थिर, यों जपिया नाथ दिन रहनाई। हुन पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा राम कली महला पंजवा। करन करावन सोई, आन नदी से कोई। ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख कीने बिरले डीठा। रहो निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहे नह काम। तन मन शीतल अगन निवारी, अनद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊ लखबेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल की वारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा, हूँ तेरा तू मैं मन बूटा। राम कली महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव। अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी। तिस गुर को हो सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर। बाजे अनहत तूरे सतगुर राव, महिमा जाकी गहर गंभीर। होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राए। सोनर बहुर न जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटे वाप। ताको नाई दुख संताप, लाल रतन तिस पाले परया। सगल कुटम ओ जन ले तरया, ना किश परम न दुविधा दूजा। एक हो एक निरंजन पूजा, जत कर देखो आप दयाल। को नानक प्र मिले रसाल, राम कली महला बनवा। तंते छुटकी अपनी तारी, प्रभ की आज्ञा लगी प्यारी। जो किश करे सुमन मेरा मीठा, तह अचरज नैनो डीठा।
अब मोजानी रे मेरी गई बलाए, बूझ गई त्रिश्र निवारी, ममता गुर पूरे लियो समझाए रहो। कर कृपा राखो गुर सरना, गुर पकराए हर के चरना, बीस बिस्वे जामन ठहराने, गुर पार ब्रह्म एक ही जाने, जो जो कीनो हम तिसके दास, प्रभ मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बेराई, गल मिल चाले के पाई, जाको गुर हर दिए सूखा, ताको बहुर न लागे दुखा, आपे आप सर प्रतपाल, नानक रातो रंग गोपाल, राम कली महला बंजवा, मुक्ते पड़ता टीका सहत, हृदय राम नहीं पूरन रहत, उपदेश करे कर लोग दृढ़ावे, अपना खेया आप न कमावे, पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ, आगे राख्यो साल गिराम, मन कीनो दे दिस विश्राम, तिलक चरावे पाई पाए, लोक पचारा अंध कमाए, खट कर्मा और आसन तोती, पागड़ ग्रह पड़े नित पोथी, माला फेरे मंगे विभूत, ए विद कोई न तरे उम्मीद, सो पंडित गुरु शब्द कमाए, त्रै गुण की ओस उतरी माए, चतुर वेद पूरन हर नाए, नानक तिसकी सरणी बाए, राम गली महला बंजवा, कोट बिगन नहीं आवे नेर, अनिक माया है ताकी छेर, अनिक पाप ताके पानी हार, जाको माया पई करतार, जिसे सहाई होए भगवान, अनिक जतन हुआ के सरंजाम, राव करता राखे कीता कौन, की जीतो सगला पवन, बयंद महिमा ताकी के तगवरण, बल बल जाइए ताके चरण, तिन्ही किया जप तप ध्यान, अनिक प्रकार किया तिन दान, भगत सोई कल मैं परवान, जाको ठाकुर दिया मान, सात संग मिल पे प्रगास, सह सुख आस निवास, पूरे सतगुरु दिया विश्वास, नानक होए दासन दास, राम कली महला बंजवा, दोष न दीजे काहू लोग, जो कमावन सोई पोग, आपन कर्म आपे ही बंद, आवन जावन माया तंद, ऐसी जानी संत जनी, प्रगास पया पूरे गुरु बचनी रहो, तन तन कलत मिथ्या विस्तार, है वर गैवर चाल नहार, राज रंग रूप सब कूर, नाम बिना होए जासी तूर, परम पुले बाद अहंकारी, संग नाही रे सगल पसारी, सो घरक में दे बिरधानी, साकत इभी करत बिहानी, हर का नाम अमृत कल माहे, एहो निधाना साधु पाए, नान गुर गोविंद जिस तूठा, कट कट रमैया तिन्ही दीठा, राम कली महला पंजवा, पंच बत्ते पूरन नाद, अनद बाजे अचरज बिस्माद, केल करे संत हर लोग, पार ब्रह्म पूरन निर्जोग, सुख सहज आनंद पवन, साध संग बैस गुन गावे, ते रोग सोग नहीं जन्म मरण राव, उहां सिमरे केवल नाम, बिरले बावे ओह विश्राम, भोजन पाओ कीर्तन आधार, नेचल आसन बेसुमार, डिग न डोले कतहू ना तावे, गुर प्रसाद कोए महल पावे, भ्रम पै मोह न माया जाल, सुन समाद प्रभु किरपाल, ताका अंत न पारावार, आपे गुप्त आपे पासार, जाके अंतर हर हर स्वाद, कह न जाई नानक बिस्माद, राम गली महला बंजवा, पेटत संग पार ब्रह्म चित आया, संगत करत संतोख मन पाया, संते चरण माथा मेरो पौत, अनिक बार संते दंडौत, ए मन संतन कै बलिहारी, जाकी ओट गई सुख पाया, राखे कृपा धारी रहो, संते चरण तोय तोय पीवा, संत दरस पेक पेक जीवा, संते की मेरे मन आस, संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राख्या पड़दा, संत प्रसाद मोहे कबू न कड़दा, संते संग दिया किरपाल, संत सहाई पहे दयाल, सुरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास,
जी जंत सगले प्रतपाल नानक संत देख निहाल राम कली महला मजवा तेरे काज न ग्रह राजमाल तेरे काज न बिखे जंजाल इष्ट मित जान सब छले हर हर नाम संग तेरे चले राम नाम गुण गायले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ न गहे रहो बिन हर सगल निरारत काम सोए ना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इया उआ तेरो उजल मुगा कर कर था के बड़े वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूरन होए हर भगतन को नाम आधार संती जीता जन्म अबार हर संत करे सोई परवान नानक दास ताके गुरबान राम कली महला पंजवा सिंचे दरब दे दुख लोग तेरे काज न अवरा जोग कर अहंकार होए वर्त अंध जम की जेवड़ी तू आगे बंद छाड़ बड़ानी तात मुड़े इहा बसना रात मुड़े माया के माते तै उठ चलना राच रहो तू संग सुपना रहो बाल विवस्था बारक अंध पर जोबन लागा दुर्गंध तृतीया विवस्था सिंचे माए बिरद पया छोड़ चलो पछताए चिरंकाल पाए दुर्लभ दे नाम बियोनी होई गे पशु परेत मुगते बुरी तिसे न बूझे जिन ए श्री सुन करतार गोविंद गोपाल दीन दयाल सदा किरपाल तुम्हें छड़ावो छुटके बंद बक्स मिलावो नानक जग अंध राम कली महला बनवा कर संजोग बनाई काच तिस संगरे हो या नाराज प्रतपारे निसार समारे अंत की बार उठ सिधारे नाम बिना सब झूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते सब माया मूठ परानी रहो तीरथ नाये न उतर समैल करम तरम सब होमे बैल लोक पचारे गत नहीं होए नाम बिहुने चल सरोए बिनहर नाम न टूटस पटल सो दे सासर सिमरत सगल सो नाम जपे जिस आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे राखो आप सगल सुखा प्रव तुमरे हाथ जित लावे तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली महला बनवा जो किच करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते चूका ठहराया सत माए ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभ की आज्ञा मन में मानी महापुरख का संग प्यार हो सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वर्ताए सोई पला जय राखे सोई मुकत थान जो जपाए सोई नाम अठसठ तीरथ जय साध पग तरे तह बैकुंठ जय नाम उचरहे सर्व आनंद जब दर्शन पाये राम गुना नित नित हर गाये आपे कट कट रहा ब्याप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट कुलाने प्रम नाठे दूरे नानको गुर बेटे पूरे राम कली महला मजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनिक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमक हृदय वसै हर के नाम की वड़ियाई कीमत कहन न जाई रहो सूर बीर तीरज मत पूरा सहज समाद तुन गहर गंभीरा सदा मुकत्ता के पूरे काम जाके हृदय वसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूरन निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जाके नाम वसे मन माई दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरे जिंद नानक कुर दिया नाम संतन की टैल संत का काम राम कली महला बनवा
बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ आगे मिली निथावे दाओ गुरपुरे की चरनी लाग जन्म जन्म का सोया जाग हर हर जाप जप ला गुर कृपा ते हृदय वासे पौ जल पार पर ला राओ नाम निधान त्याय मन अटल ता छूटे माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होय निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बिचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सोहर भजन साध के संग मन तन रापे हर के रंग छोड़ सियानप भव चतुराई मन बिन हर नामे जाए न काई दया तारी गोविंद गोसाई हर हर नानक टेक टिकाई राम कली महला बंजवा संत के संग राम रंग केल आगे जम स्यों होए न मेल अहम बुंद का पया विनाश दुर्मत होई सगली नास राम नाम गुन गाए पंडित कर्म कांड अहंकार न काजे कुशल सेती कर जाए पंडित राव हर का जस निध लिया लाभ पूरन पे मनोरथ साब दुख नाठा सुख कर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिजन होए सगल निदान संतोख आया मन पूरा बाए फिर मांगन काहे जाए हर की कथा सुनत पवित जेवा भक्त पाई गत मत सो परवान जिस हृदय बसाई नानक ते जन उत्तम पाई राम कली महला मजवा गौ कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओ चरनी आए बई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरपुरा पेट अति उधार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओ सेवक सेवा करे मुख बिरावे अंत टकावे एकत ठहोर ओ कही न समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड जो मांगे सो पूखा रहे इस संग्राचे सो कछ न रहे इसे त्याग सत संगत करे बड़ पागी नानक ओ तरे राम कली महला पंजवा आत्म राम सरब मैं पेक पूर्ण पूर रहा प्रवेक रतन मोल हृदय मैं जान अपनी वसत तू आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद वड़े पाग होवे तो पाये बिन जेवा क्या जाने स्वाद रहाओ आठ दस बेद सुने कै डोरा कोट प्रगास नादि से अंधेरा पशु परित कास संग रचे जिस नाही बुझावे सोकित बिद बुझे जानन हारा प्रभ जान ओत पोत पगतन संगान बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेड़ नावे राम कली महला बंजवा दीनो नाम की ओ पवित हर तन रास निरास है बित काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुन गाए बाजे अनहद बाजा रस कर सक गुन गावे हर जन अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ आए बन्यो पूर्व ला पाग जन्म जन्म का सोया जाग गई गिलान साध के संग मंतन रातो हर के रंग राखे राखन हार दयाल ना किज सेवा ना किज काल कर कृपा प्रभ की नी दया बूढ़त दुख में काढ़ लिया सुन सुन उपजो मन में चाओ आठ पैर हर के गुन गाओ गावत गावत परम गत पाई गुर प्रसाद नानक लिवलाई राम कली महला बंजवा कौड़ी बदले त्यागे रतन छोड़ जाए ताहू का जतन सो संचय जो हो छी बात माया मोया टेढ़ो जात अपागे ते लाज नाही सुख सागर पूरन परमेश्वर हर न चेत्यो मन माही रहाओ अमृत कौर ये कौरा बिखिया मीठी
साकद की बद नैनो डिठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनजन बिछो डसाना माया कारण साधि चूरे मन मुख कबे न उस्तत करे निरपो निरंकार दातार तिस्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपट्यो भ्रम गिरह नानक तरिये तेरी मेहर राम कली महला मजवा रैन दिन जपो हर नाओ आगे दर गे पावो थाओ सदा आनंद न हो भी सोग कबू न व्यापे होमे रोग खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पे बिस्मादा परम गद पावे हर सिमर प्राणी राव गान मिन देखो सगल विचार नाम बिना को सके न तार सगल उपाव न चाले संग पवजल तरिये प्रभ के रंग देही तोए न उतरे मैल हमे व्यापे दुविधा फैल हर हर औखद सोजन काए ताका रोग सगल मिट जाए कर कृपा पर ब्रह्म दयाल मन ते कबो न बिसर गोपाल तेरे दास की होवा तूर नान

एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार पव जल उतरे पार देवन हार दतार अंत न पारा वार जाके कर सर्व निधान राखन हार निधान नानक पाया एहो निधान हर हरे निर्मल नाम जो जपे तिस की गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला मजमा दुर्लभ देसवार जाए न दरगह हार हलत पलत तुद होए वड़ियाई अंत की बेला ले चढ़ाई राम के गुन गाओ हलत पलत होए दोवे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिन सह सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तम एहो करम सगल तरम में श्रेष्ठ तरम हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरे पार पूर्ण तेरी होवे आस जम की कटिए तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जे नानक सुख सहज समीजे राम कली महला बजवा जिसकी तिसकी करमान आपन लाए गुमान जिसका तू तिसका सब कोए तिसे अरा सदा सुख होए काहे परम प्रमे बिगाने नाम बिना किस काम न आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहो जो जो करे सोई मान ले ओ, बिन माने रल होवे खे तिसका पाना लागे मीठा गुर प्रसाद विरले मन बूठा वे परवा अगोचर आप आठ पहर मनता को जाप जिस चित आए बिन से दुखा हरत पलत तेरा उजल मुखा कौन कौन उदरे गुन गाए गणन न जाए कीम न पाए बूढ़ दलो साध संग तरे नानक जिसे परापत करे राम कली महला पंजवा मन में जाप भगवंत गुरु पूरे एहो दीनो मंत मिटे सगल पैत्रास पूरण होई आस सफल सेवा गुरुदेवा कीमत किछु कह न जाई साचे सच अलख अपेवा रहो करण करावने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनीत सच सहज सुख पावे मीत साहब मेरा तपारा खिन मैं थापियो थापनहारा तिस बिन अवर न कोई जन का राखा सोई कर कृपा अरदास सुनीजे अपने सेवक को दर्शन दीजे नानक जापी जप जाप सब ते ऊच जाका परताप राम कली महला मजवा बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभ तेरी टेक अवर छुटी सब आस अचिंता ठाकुर पेटे गुणदास एको नाम त्याए मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहो तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओहि त्याया आनंद हर रूप दिखाया इसी की ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निधान राखन हार निधान सर्व की रेन होवी जे आ मिटाए मिली जे अंदिन त्याये नाम सफल नानक एहो काम राम कली महला बजवा कारण करण करीम सर्व प्रतिपाल रहीम अल्ह अलख अपार खुद खुदाए बड बेसुमार ओम नमो भगवंत गोसाई खाल करावरया सर्वठाई राव जगन्नाथ जग जीवन माधो पोपंजन रिदमाय राधो रिकी केस गोपाल गोविंद पूरन सर्वत्र मोकंद मेहरवान मौला तू ही एक पीर पैगंबर सेक दिला का मालक करे हाक कुरान कतेव ते पाक नारायण नर हर दयाल रमत राम कट कट आधार वासुदेव बसत सब ठाए लीला किच लखी न जाए मेहर दया